0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अस्सलाम वालेकुम ग्रामीण वालों, जिम मशाल खान और तासु हो रहे रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम रेडियो अमन और दूड़ी रडेरा मनना।
0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अस्सलाम वालेकुम ग्रामीण वालों, जिम मशाल खान और तासु हो रहे रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम रेडियो अमन और दूड़ी रडेरा मनना।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।

पाकिस्तान वनडे सीरीज की ऑस्ट्रेलिया शिकस्त और कड़े दे वनडे सीरीज अहरी मैच से सलोर विकेट उसरा गट अले दे कजाफी स्टेडियम लाहौर किलो बिदली मैच की ऑस्ट्रेलिया पूरा टीम दो सल वेहतम और उसकी योसल व पंद्रह रन जोड़ वोल बांधे आउट शव्यू द हदफ पर जवाब की कुमी टीम दो सल वेहतम और उसके शपक विकेटों पर नुकसान योसल तब पंद्रह रन हदफ पूरा कर दे द ऑस्ट्रेलिया तरफ न कप्तान जोश इंग्लिस पिंदश पितर रन जोड़ कर दी मारन सलाब शेन नुलस और एलेक्स केरी हम नुलस रन जोड़ कर दी पाकिस्तान लहाशिन शाफरी दी द्रे विकेट हासिल कर दी इब्रार अहमद और शदाब खान द्वा हारिस रूफ योलो वार्ड आउट कर दी हदफ पता कुप की कुमी टीम दो सल वेख्तम और उसकी योसल पंद्रह रन हदफ पूरा कर दी कुमी टीम तरफ न बाबर अजम सलवेख्त रन जोड़ कर दी मासर दाकत विश्त शदाब खान नहमिश्त और अब्दुल समद अतल्लस रन जोड़ कर दी द ऑस्ट्रेलिया तरफ न कोहेन में द्रे विकेट हासिल कर दी पाकिस्तान द ऑस्ट्रेलिया खिलाफ वनडे सीरीज गटले दे वॉलीबॉल फॉर बांग्लादेश क्रिकेट टीम तगट दचका मिलो शविद फास्ट बॉलिंग कोच शान टेट पले हुदीना मुस्तफी शविद द यू मीडिया रिपोर्टर मा सभी का ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर द हंदानी वजूहत लवजे खपल मनसब न बिली दलो फैसला कर दिया शान टेट खपल बयान की वाली दीजिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और कौमी टीम सरा तेरह दुलस म्याश्ते हवाला पारा डेर यादगार वे शान टेट द बोर्ड लोभाड़ो शुक्रिया द कौल सरा मुस्तकबिल लपारा ने ख्वाहिशा तो इजहार कर दे मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तर महातिर सलविश घंटों पर दौरान करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के मौसम उचो गर्म और मौसमियात महकमे लफावली शिविधि चिरातल को सलीरश घंटों की बा करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के मौसम उचो गर्मी और जीनो अलकों की बासमान खाल खाल और यजीवी दो मौसमियात महकमे तर महा करकल की मरवत बनो और टांग खोश सिम के नजियात नजियात दर्जय हरत सलूर तिरश डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम पिंजविश डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कड़े शवि और हवा की नमय तनासुब वविश फीसद उदा हवा रफ्तार तक किलोमीटर यो घंटा रिकॉर्ड कड़ी शवि दे अवली दीसरा करकल की मरवत बनो और टांग खोश सीम के बनवर सवा सहर व मिनट दपास पिंज बजे सिरोही और महाम दुष्ट मिनट दपास व बजे बप्रिवजी दऊद रेडियो अमानट सी अशर या चार नेटवर्क अहम खबरों दनूर अहम खबरों उदल उदा पारा रेडियो अमानट

0: गहरे जख्मों का कोई साहिल पे कड़ा किया जाने, समुद्र कितना गहरा है। जहानिया नूरी हानिया नूर बिल्कुल भाई देवे कॉल तरफ से गुरु सरा कॉल को उनकी सुख दिया कम से नदी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: खैरियत जी दासु खैर
1: मुजीब रहमान फ्रॉम चबरग्राम।
0: डायरेक्टली रावेश तकरीबन लगातार मुजीबुर रहमान से मन कहू बिल्कुल।

गुरु जनाब कॉल बंदी मुसर कॉल कर सकते कोशिश दा के यो कस यो जल कॉल कर दोबारा कॉल जमा कवे कमा तो जड़ा शकुल के 50 पॉइंट्स पर नकट की गया टीम ना गुरु पर आयर मंदी सुख दियो कम से ना अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो ना गुरु साहब आवाज नहीं ढेर से मन नहीं नहीं कॉल तो गुरु मुसर कॉल कर सुख दियो कम से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी सुख दकम से ना हाय आवाज बदली गई जी तो मैं समझ तो जी बचते देखे ना मना।

0: अभी कुछ ना अपने कॉल तरह से कुरुंग सर कॉल कौन किसको यो कॉल ड्रॉप शो लीजिए बस दोबारा कॉल कॉल शी कॉल दोबारा से पतिन सुनो 711-1099 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। सुख दकम जरा
1: फैजान
0: जी। फैजान जी फैजान प्रोग्राम के दरदार के ले वायो जी। अब पुख्तन जी कम पुख्तन में कर जवाब रखे

0: जिन आप एस एम एस से मतलब दे एस एम एस एस ने से मतलब दी एम ने से मतलब दी ओ एस ने से मतलब दी एस एम एस एस एम एस से मतलब दी जी
1: दर्द मेरे तू चीर के दिल दिखला देंगे
0: बिल्कुल जनाब ऐसे में मतलब दीदार बिल्कुल जनाब सस्कॉल अदा करेंगे प्रोग्राम पर खरी मिस्र बलहार अगले दीजिए ऐसा डेरे से तो मन को खुशहाल हो से हाँ बोले मिस्र जागल दी ना माँ हो जी कॉल नहीं ड्रॉप करी चाह कॉल तुमने ड्रॉप कर डेरे से तो मन ना एने वे कॉल तरफ से कुरुंग सरा कॉल को उनके सोख दे और दकम जने दीजिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी
2: वालेकुम सलाम
0: जी सोख दकम जने
2: कठोर प्रोग्राम
0: जी एसएमएस मतलब से दे
2: शॉर्ट मैसेज सर्विस
0: शॉर्ट मैसेज सर्विस डेरे से तमन्ना बिल्कुल सही दी टीम जबर की राजे का ना
2: जी
0: डेरे से तमन्ना को खुर के खुशहाल रहा तो सो के अल्लाह हाफिज एनी वे जनाब पुख्तन दस में सुकूम बटग्राम के दस द्री के लिए सीधा अलिफ ने शुरू की गई शाबाश शाबाश शाबाश बटग्राम के दस द्री के लिए सीधा गई अलिफ नाराजी शुरू के लिए मतलब अलिफ राजी के ना अमजा जो तुम गवाई उमड़ा अगर राजी शाबाश बटग्राम के दस द्री के लिए अगे पर शुरू के अलिफ यानी अमजा राजी शाहबाजी जवाब समाधा कबूल शेखा मैसेज अगले भाई प्रोग्राम जबरदस्ती मायरा शिराजी मायरा शिराजी डी रहे थे मन ना बल मैसेज अगल ली इनशाला जबर बगटी आई एम जोया नीली परी औडे इरवख नबाद में गेम शो वाउर दिला हवी खजदा सुबल जिद त्रिवेणी विकाल तरफ से गुरु सर काल कौन के सोख दे औ द कम जेने दे जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी
3: वालेकुम सलाम जी सिंगल जी
0: जनाब सुख द कम जेने जी आरिफ जमा ख्याल
3: अरगा शोराई
0: जी दा आज बोल दी किदा कदी के जमा शक्ति हडे रे तमन को आरिफ सस दो खाल कहो लो दी के जमा शक्ति जी अबे कुछ जनाब दगा यो कॉल्स बखलो गुरु सर काल को उनके सोख दे जनाब आउ कम से नदी आप जम पुख्तन दादा जनाब चे बड़गाम के दासी द्री की लिंच दगा बा ने शुरू की बड़गाम के दासी द्री की लिंच दबा ने शुरू की दस द्री की लिंच दबा ने शुरू की काल खलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम
0: सलाम जनाब अली सुद कम से ना
3: उमर ज्यादा की घोड़े है जी
0: जी उमर ज्यादा टीम जबर है टीम
3: जेर
0: जी दस दरी के लिए अभी ने शुरू की गई
3: अरे थोड़ा
0: बेन बेन बेन
3: काज हो
0: बेन का ना उस अगम आप बदल कर दे चूंकि अगम लगे गलत हुई लेकिन ना क्या मैं बदल को उस बेन बेन उस बेन बेन बेन बेन डेरा मंदिर प्रकार बंद गुरु गुस्सा काल का उनके सुधा बदा खिरनी कॉल जी अस्सलाम वालेकुम जी जी टीम जबर है टीम जेर
3: टीम जबर
0: बड़ग्राम के दास द्री के लिए बेन शुरू की गई बेन
3: बड़ग्राम बसल और बांदेरा
0: अन्ना बड़ग्राम की पकार दी
3: बड़ग्राम की
0: आओ कंधा बटर बड़ग्राम की दी
3: बड़ग्राम बांदेरा और
0: बांडिगो टीम जबर के टीम जेर के
3: जबर
0: के बिल्कुल जनाब तसो कल ड्रॉप के बिल्कुल सही दिशा से जवाब अभी कुछ तसो फिलहाल पॉइंट्स हुए मैम 10 20 30 40 50 द टीम जबर दी और द टीम जेर सुदी 10 20 30 40 50 ओ मुकाबला एक बारी फिर बराबर जी हाय मुकाबला ये जले बराबर शो जी हाय हाय हाय जी खाब उस बस आखिरने कॉल्स बवीन बस कॉल्स आखिरने कॉल्स मतलब दा जिसे मैं पुख्ता ना कूमा कद टीम जबर कॉल लगे द अगले जवाब रात अगे पे विनर भी कद टीम जेर कॉल लगे द अब अगले जवाब रात अगे पे विनर भी सही था